0: तो ये एक मेरी जाती राय है, वो यही कि जिस तरह बाकी ये कम्युनिटी के लोग या डैनिश लोग या जिस तरह भी कोई अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें अगर खाना अगर बंदा खुद अपनी फैमिली के साथ अगर पार्टिसिपेट करता है तो ले जाए, तो वो वहाँ अपने आप को खुद मतलब सर्व कर सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि बजाय इसके कि अगर वो खाना रखते हैं तो उसके लिए वो एंट्री फीस रखते हैं, तो वो ज़ाहिर बाज़ दफ़ा मुश्किल होती है या ज़्यादा होती है। एक प्रोग्राम मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना कि ये कोई शायरी का प्रोग्राम को पाकिस्तान से शायरा थी या शायर थे, मुझे अभी नहीं सही इसका पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहाँ भी एंट्री थी 250 करोन या कितना पता नहीं, तो वो भी प्रोग्राम है। और यही मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ जो लोकल मीडिया है वो डजंट मैटर, वो रेडियो आम वतन पे आए या ना आए, यहाँ लोकल मीडिया जितना भी है वहाँ किसी भी मीडिया पे आके थोड़ा सा प्रचार करें किसी भी प्रोग्राम का, ताकि लोगों को पता चले, तो उससे लोग ज़ाहिर है लाजमी बात है जो दिलचस्पी रखते हैं शायरी से या अदबी लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये हैरानगी जब हम बाहर बाद में देखते हैं ना वो सोशल मीडिया पे तस्वीरों की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में ये प्रोग्राम हुआ है, तो थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार ये क्यों इस तरह होता है।
1: जैसा भाई, एक तो हम लोग खुद समझते हैं कि अब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, तो मेरी उम्मीद और तवक्को ये है कि पूरे डेनमार्क में जितने भी 35-37-40 हज़ार पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, सबने तक है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ ना फेसबुक पे, तो मैं समझता हूँ कि सारे पूरे डेनमार्क ने देख ली। इस तरह होता नहीं है, हर चीज़ आपकी नज़र से नहीं गुजरती, वो आप कितने भी जाने पहचाने हों या कितने भी आपके फॉलोअर्स हों, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की नज़र से वो चीज़ गुजरती है। तो ये आपने दुरुस्त कहा कि ज़फ़र भाई, मुझे याद है जब शुरू में जब ये इंटरनेट का दौर नहीं था, तो जब कोई प्रोग्राम होते थे ना, तो यहाँ मेन गेट के सामने एक पोस्ट बॉक्स लगा होता था, जहाँ पे हमने कहा हुआ था कि इतवार से पहले वहाँ पे आप फेंक दें जो भी आप अपना पंपलेट या आपने लान करवाना है। तो वो जनाब वो उस पोस्ट बॉक्स में होता था, हम सुबह जब आते थे खोलते थे उसको तो देखते थे, तो वो ऐलानात जो है वो पढ़ के लोगों को सुना देते थे कि जी फलां तारीख को फलां प्रोग्राम हो रहा है, फलां को ये हो रहा है, फलां को वो हो रहा है। तो ये ट्रेंड जो है अब तो वो भी नहीं, आपको आना भी नहीं पड़ता, अब तो सिर्फ आप SMS करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, यानी इतनी सहूलियात हो गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बेसिक हमारा है ना, हमारी जो सोच है वो ये है कि मीडिया की अहमियत क्या है, ठीक है। हम उसको अहमियत नहीं देते या समझते कि एक मीडिया जब उस पर बात आती है तो वही बात जो है वो कितने लोग जो है वो सुनते और करते हैं।
0: जी जी, अच्छा मीडिया के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये ज़ाहिर है मीडिया की अहमियत इस वजह से भी कम होती जा रही है कि अभी सोशल मीडिया पावरफुल है इस वक्त पूरी दुनिया में, और हर बंदे के पास जिसके पास एंड्रॉयड या आईफोन है या कोई भी नेट वाला टेलीफोन है, तो वो ज़ाहिर है उसके पास वो सारा इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया की, और वो जो कुछ भी करना चाहे उस मोबाइल के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए वो अपने आप को फैला सकता है। लेकिन बात फिर जो क्रेडिबल ज़ाहिर है जो चीज़ होती है वो तो लाजमी बात है, जैसे हमारा रेडियो हम वतन है, रजिस्टर्ड है रेडियो वेस्टोबो के साथ, और इससे जो भी बात अगर होती है या जैसा आपने फरमाया भी कि ज़रूरी नहीं कि इतना हमारा प्रोग्राम वायरल भी हो, लेकिन किसी हद तक जब वो फेसबुक पे लाइव जाता है या बाकी ग्रुप्स की वजह से लाइव जाता है, तो लाजमी बात है ग्रुप्स में हज़ारों के हिसाब से लोग शामिल होते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, तो इस तरह ज़्यादा वायरल हो जाता है। इस वजह से वो जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मकामी, उसकी अहमियत ज़रा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ जो लोकल मीडिया है हमारे, जितने भी रेडियो चला रहे हैं, TV भी साथ चला रहे हैं, तो लाजमी बात है उन पे अगर कोई बंदा आता है अपनी बात करता है दिल की या कोई प्रोग्राम के हवाले से, तो वो पेटेंट होती है, मुस्तनद होती है, लोग उनको उसको समझते हैं कि वाकई ये है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये कह लें कि इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
1: अच्छा, ये मियां साहब ने एक और मैसेज कहते हैं, रेडियो हम वतन का फूल और कलियां बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, और ये बच्चों का प्रोग्राम था फूल और कलियां
0: जी,
1: जिसमें ज़फ़र भाई बच्चे जो है ना वो हम खुद उसमें फ़ोन किया करते थे और टेलीफोन लाइन बिजी होती थी, लोग नाराज़ भी होते थे, घंटे का प्रोग्राम होता था और 20-20, 30-30 बच्चे जो हैं वो उसमें फ़ोन करके कोई पहेली सुना रहा है, कोई नगमा सुना रहा है, कोई सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करके आगे से शर्मा गया, बोला ही नहीं है।
0: जी, ऐसे ही। अच्छा, इसके लिए रजा साहब ये दोबारा हम सिलसिला शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़ाहिर ज़िम्मेदारी जो होती है वालदैन की है। अगर उनकी फैमिली में बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो कोई भी मतलब बात

0: शेयर करना चाहें अपने हम असर बच्चों के साथ या लोगों के साथ, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि रजा साहब फ़ोन बताते हैं रेडियो हम वतन का, तो उस पर आप रब्ता करके तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि चलो मेरे आने से तो पहले था, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर वो सिलसिला दोबारा शुरू हम करना चाहें उसके लिए हम मुकम्मल तौर पर रेडियो हम वतन की पूरी टीम और हम लोग तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए वही बात कि अगर वालदैन उनके घर में कोई एक आध बच्चा दो बच्चे चाहे जितनी भी उम्र के हैं, ज़ाहिर है टीन एज से कम जो हैं, तो वो अगर हमारे साथ रब्ता करें तो उनके साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ जाएं या टेलीफोन कॉल के भी जरिए हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ लोगों में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मैं समझता हूँ कि सिलसिला, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये भी एक सिलसिला शुरू होना चाहिए। चलें, जिस तरह यहाँ सियासत के वाले से या इंटरनेशनल सियासत के वाले से या सकाफत के वाले से प्रोग्राम आता है, तो एक बच्चों के हवाले से भी अगर एक सेगमेंट हम रख लें ना, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा।
1: बिल्कुल जफर भाई, देखें करने को इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी जो है ना वो सपोर्ट भी चाहिए।
0: जी जी,
1: तो ये है कि फूल और कलियां प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है, हमारे पास टाइम भी है और बल्कि इतना टाइम है कि अगर हमारे बच्चे उसमें शामिल होना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर कोई समझते हैं कि ये दोबारा प्रोग्राम जो है फूल और कलियां बच्चों के लिए जो है वो शुरू होना चाहिए, बड़ा मजा आता है, छोटी छोटी तोतली तोतली जबान।
0: चले आप ऐसा करें ना, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं चंद हैं मेरे दोस्त जिनके बच्चे जो है ना वो हैं बड़े एक्टिव इस हवाले से, मैं कोशिश करता हूँ उनसे रब्ता करके ना, तो कोई इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं कि अगर उनके बच्चे चाहे टेलीफोन कॉल के जरिए या अगर इधर आना भी चाहें तो बंदा इधर आके उनके साथ प्रोग्राम भी कर सकता है, एक सेगमेंट एक हम रखते हैं, आप भी कोशिश करें। तो इससे ये है कि चलें यहाँ के बच्चों को भी थोड़ी दिलचस्पी होगी, वो सुनेंगे और देखेंगे भी हमारे प्रोग्राम,
1: और कम से कम उसमें ये होगा कि वो जो एक घंटा आधा घंटा जो जितने का भी प्रोग्राम होगा उस दौरानिए में आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से जो है वो बचे।
0: ज़ाहिर है ऐसे ही बड़ी मैं पॉजिटिव ये डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा राजा साहब, एक आपने जिक्र किया 14 अगस्त का या बाकी जो हमारे पाकिस्तानी त्यौहार हैं 23 अगस्त या 23 मार्च और 25 दिसंबर और इकबाल डे इस तरह। अच्छा 14 अगस्त का भी काफ़ी पोस्टें मैंने देखी हैं, जी पोस्टें देखी हैं कि वो जनाब 14 अगस्त इस वक्त इस दफ़ा बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऑर्गेनाइज़र हैं या जो लोग भी मनाने के लिए ये तैयार हैं 14 अगस्त, तो कोशिश करें कि एक ही बड़ा प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन करके ना बाकी लोगों के साथ, बाकी तंजीमात के साथ, उसमें चाहे एम्बेसी भी हो सकती है, चले एम्बेसी अपने उधर तो सुबह के टाइम करते हैं प्रोग्राम, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जैसा रजा साहब ने भी ये फरमाया कि एक इज्तमाही तौर पर जितनी भी यहाँ तंजीमात हैं चाहे वो मजहबी हैं, सकाफती हैं, समाजी हैं या सियासी हैं, उन सब को एक जगह इकट्ठा करके एक प्रोग्राम करें बहुत बड़ा सा, चाहे वो ओपन एयर हो या जैसे टाउन हॉल में गोल्फ प्लेस पे होता रहा है, इस तरह का होना तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जी
1: जी जफर भाई कॉलर है हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजा भाई
1: जी
2: सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा आ गया हूँ ये, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम का जिक्र हुआ है फूल और कलियों का। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम वतन शेख जफर साहब, ये जो फूल और कलियां प्रोग्राम था ना, यकीन करें कि बड़ों से लेकर छोटों तक ये इतना मकबूल प्रोग्राम था, हमारे बच्चों की उर्दू रेडियो हम वतन से सीधी हुई है। ठीक है,
0: क्या बात,
2: बिल्कुल ये बिल्कुल एक बहुत चढ़ते सूरज की तरह सच है। और इसके ऊपर आज फिर इतनी देर बाद देखो हमें अपने बुजुर्गों को याद करना पड़ेगा,
0: हाजी साहब
2: हाजी साहब मुस्तफा साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ अपने दूसरे अजीजों के लिए दुआ, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और नागी साहब से और पुराने कई दोस्त थे, यानी कि ये जो रेडियो, ये मुझे कहने दीजिए, रेडियो हम वतन की जो मशहूरी थी, कामयाबी थी, ये फूल और कलियां की वजह से इतनी मकबूल हुई थी, इतनी मकबूल, और आप अब मुझे खुशी हुई है दोबारा आपके मुंह से ये। जफर साहब, आप माशाल्लाह टैलेंट है, आपके पास टाइम भी है, ऐसा करते हैं ना कि बेशक हर दूसरे हफ्ते रख लें, अगर यानी कि टाइम नहीं होता या क्लील होता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ना या दरमियान में टच दे दिया करें।
0: जी जी, जी जी।
2: तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि ये कह लो कि इसके, देखो जब हम फोन पर बात करते हैं उसके पीछे हमारी तईद होती है कई लोगों की, कई फैमिलीज की, कई बच्चों की, बुजुर्गों की। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आप तवज्जो दें, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो
0: जी जी मियां साहब, आप से रिक्वेस्ट ये है कि आपके भी बड़े कनेक्शन हैं यहाँ डेनमार्क में, काफ़ी अरसे से हैं, और समाजी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी काफ़ी मुतर्रक हैं। आप भी कोशिश करें, हम सब भी इंफरादी तौर पर सब कोशिश करते हैं कि ऐसे फैमिलीज़ को तलाश करें जिनके बच्चे ये दिलचस्पी रखते हैं अदबी हवाले से, ये नातिया कलाम, हमदिया कलाम, या कोई भी अगर बच्चों की कोई ऐसी मतलब दिलचस्पी उसमें अगर वो हैं इंटरेस्टेड, तो उनके साथ आप भी रابطہ करें, हम भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाएं, ताकि लोगों को, यहाँ के बच्चों को ख़ास तौर पे पता चले, और उससे फिर दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे ना, तो वो ज़ाहिर है उन पर भी वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जैसा रज़ा साहब ने फरमाया कि इस वक्त सूरत हाल ये होती है कि बच्चे मोबाइल पर हमेशा हर वक्त लगे रहते हैं या कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो चलें ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल पर भी उनकी इम्प्रूवमेंट होगी इस तरह के प्रोग्राम को शुरू करने में। तो हमारी कोशिश
2: इंशाल्लाह, सॉरी आपकी दुआएं फिर मुझे लगी हैं, लेकिन एक मिनट में बात करूंगा कि आप एडजस्टमेंट करें, टाइम निकालें, महीने में एक दफा हो, दो हफ्तों के बाद हो,
0: जब शुरू हो जाएगा ना प्रोग्राम,
2: हम आपको इंशाल्लाह ताला बच्चे मुहैया करके देंगे।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रज़ा साहब, मैं समझता हूँ कि ये भी एक सिलसिला अगर शुरू हम कर देना, तो इससे भी एक, मैं समझता हूँ कि हमारे ये डेनमार्क के बच्चों के हवाले से जो उनकी बाकी अदात हैं उनसे भी थोड़ा सा ज़रा हट जाएंगे, ख़ास तौर पे ये कंप्यूटर या मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल इनका, ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ ट्रेंड ना लोगों का, क्योंकि बाहर भी जाएँ घर भी देखें तो बच्चे पास अपने, कोई मेहमान आए हुए हैं वो अपने कामों में वो बैठे हुए हैं, तो ये होना चाहिए ज़रूर।
1: बिल्कुल जफर साहब, ये एक चीज़ है, इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं इसको, फूल और कलियां जो है प्रोग्राम, इसको एक नई शक्ल में। लेकिन ये है कि अब मैं कैमरे के पीछे खड़ा होता हूँ, कैमरे के सामने अगर कोई बैठा हो बच्चा या बड़ा जो लीड कर रहा हो, तो उससे एक फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस पर जो है ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी क्या कहते हैं उसका चीज़ नहीं है कि ना हो सके।
0: जी जी,
1: तो बिल्कुल जनाब इसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे, गर्मी की छुट्टियों के बाद देखते हैं
0: जी,
1: कोई प्रोग्राम लाए अमल बनाते हैं इसका।
0: ठीक, चलें। अच्छा रजा साहब, दूसरा कैसा आप छुट्टियाँ कैसे गुजार रहे हैं, या कोई प्लान है कहीं?
1: छुट्टियाँ बच्चे गुजार रहे हैं, हम तो अभी काम कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: छुट्टियाँ जो हैं वो अभी कुछ अच्छा, हफ्ते हैं।
0: मेरी तरह ही, मैं भी काम ही कर रहा हूँ, बच्चों को तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन
1: मेरे ख्याल में आपने और मैंने ना वो बाबे कायद आजम का एक कौल था कि
0: काम काम और काम
1: और काम।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे हमारा लिए काम ही अच्छा है, क्योंकि हम अगर घर बैठ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है सुस्त हो जाएंगे। तो दूसरा ये जो मैंने जिक्र किया कि 14 अगस्त आ रहा है, वाकई हमारा ये बड़ा, बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन की वजह से आज हम पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है, दिली ख्वाहिश, कि यहाँ जो भी प्रोग्राम हो, और अगर एक प्रोग्राम हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अफेक्टिव होगा, लोगों को ज़्यादा फैसिनेट करेगा। तो देखें, चलें, जब आएगा तो फिर पता चल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो रिक्वेस्ट हमने की है नाज़रीन के, आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें, और इससे ये होता है कि आपके दिल की बात का भी पता चलता है, आपके ज़हन का भी पता चलता है कि आप किस हवाले से, किस मौजू पर आप बात करना चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम बजाय एक महदूद पैमाने पर किसी मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाकर उससे उसके प्रोफेशन के हिसाब से बातचीत करें, हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी बातों को उसमें इजाफा करके मुख्तलिफ मौजूदात पर आप लोगों से भी अपनी बातें शेयर करें। जी
1: वैसे जफर साहब आइडिया आया क्योंकि अभी आपके प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है
0: जी,
1: उस पर अगर थोड़ा सा क्योंकि मैंने देखा है कि हम और ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है 20-25 साल का यहाँ पे
0: जी,
1: कि जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं जब वो नहीं आते तो प्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है
0: जी जी,
1: तो अगर एक नया प्रोग्राम उसकी पहले भी थोड़ी सी आइडिया आया था कि उस प्रोग्राम का नाम मेरे जहन में है
0: जी जी,
1: कि अगर कोई किसी की उलझन है यानी कोई किसी की कोई परेशानी है कोई ऐसा मामला है जिसको वो खुद सोच यानी हल नहीं कर सकते और किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो अगर वो हमें मिसाल के तौर पे खत लिख दें ईमेल लिख दें ठीक है और उसमें ये मेंशन कर दें कि जनाब आपने मेरा नाम नहीं लेना
0: ठीक है
1: तो हम उस इशू को जो है वो लेके आके उस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर हमारे जो सामाइन है रोड टेलीफोन करके वो भी अपनी राय दे सकते हैं, तो जो हमारे जिनका वो इशू होगा जिनका वो मसला होगा जिनका वो प्रॉब्लम होगा वो उनको शायद उसको हल करने में क्योंकि मतलब जब एक की राय तो एक होती है
0: जी जी।
1: जब वही राय अगर 10 लोगों की होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जी आप उसको किस तरह जो है वो हल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन बात फिर वही रजा साहब आती है कि इसके पीछे सबसे इनफरादी जिम्मेदारी उस बंदे की है कि अगर उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको उसने किस तरह इम्प्रूव करना है। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ ना जितनी देर उसके अंदर से ये चीज़ वो शर्माना झिझकना ये ख़त्म नहीं होगा तो वो कभी भी वो उसको हल नहीं कर सकेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करे टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ये अगर स्टूडियो में नहीं आ सकते टाइम नहीं है इसके लिए वही बात के वो खुद।
1: अच्छा एक चीज़ का तो मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि जो है ना वो कहते हैं कि प्यासा जो है ना वो कुएं के पास जाता है
0: जी जी
1: ठीक है
0: ऐसे ही
1: कुछ प्यासे हम भी हैं कुछ प्यासे हमारे सामईन नाजरीन भी हैं
0: जी जी,
1: तो वो तो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारा प्रोग्राम देख भी लेते हैं सुन भी लेते हैं
0: ठीक है,
1: लेकिन शायद हम में वो कमी है कि हम वो माइक लेके उनके सामने पेश नहीं होते जिस तरह भी ये प्रोग्राम होते हैं
0: जी जी।
1: यहाँ पे मुख्तलिफ हो गए तो क्योंकि वहाँ पे तो लोग ऑलरेडी गैदर इकट्ठे हुए हुए हैं, तो अगर हम वहाँ पे माइक लेके कैमरा लेके चले जाएं और वहाँ से हल्की फुल्की सी उनके साथ गपशप कर लें
0: जी,
1: वहाँ के उनके हालात जान लें उनसे अगर कोई भी टॉपिक है कोई इशू है उनसे पूछ लें कोई राय ले लें कोई सर्वे कर लें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से भी है कि हम भी उस तरह जो है आवाम में नहीं निकले या गए शायद हम
0: इस तरह बिल्कुल है इसी तरह ही टाइम की कमी होती है। और मैं कल का ही आपको बताता हूँ कि ये एल्बर्ट स्नोन में एक प्रोग्राम था ये सारा वहाँ मैं गया लेकिन वो टाइम की बहुत कमी थी, मैं अकेला था, जाहिर है बच्चे भी वो दूसरी जगह पे थे गए हुए थे तो मैं अकेला नहीं मतलब है मैनेज कर सकता ना, या इसके साथ अगर कोई आपके साथ कोऑर्डिनेशन होती तो चले जाते तो वहाँ जाके, फिर भी मैंने कुछ वो क्लिप्स बनाए हैं वो मैं एडिट करके ना तो वो चढ़ाऊँगा।
1: कासिम नज़ीर साहब जो है ना वो सबसे जो है ना वो ज़रूरी है
0: जी जी,
1: अकेला आदमी आप कैमरा उठाएंगे
0: मुश्किल हो जाता
1: बात करेंगे,
0: ज़्यादा लोग जो है ना वो चाहते हैं कि चलें जी। अच्छा वो जब मैं क्लिप बना रहा था ना तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ आने रहोगे, उनको बताया मैंने फेसबुक पे रेडियो आम वतन की वेबसाइट उस पर होंगे, तो ज़ाहिर है वो खुश हुए कि ये चलें वहाँ का नुमाइंदा है या इस तरह, लेकिन फिर भी मैं उस तरह मैनेज नहीं कर सका ना, वो एक तो टाइम की कमी थी दूसरा अकेला था मैं, तो बहरहाल ये है कि इसके लिए हम कोशिश करते हैं कोई इस तरह की, जैसा आपने सुना ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रेडियो हम वतन का माइक लेकर ना फील्ड में जाऊं ताकि लोगों को पता चले कि ये रेडियो हम वतन पता तो है ज़्यादा लोगों को लेकिन उनको जब पता चलेगा कि ये वाकई अमली तौर पे ये एक्टिव है तो फिर अच्छा लगता है ना कि ज़ाहिर है, और इस तरह फिर वो लोग कोशिश होगी उनकी बातचीत करने की भी, तो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करते हैं। तो ये मदन नाथिन आज का प्रोग्राम था और हमारी ये कोशिश होगी, ठीक है हमारा प्रोग्राम रूटीन वाइज चलता रहेगा किसी मेहमान के साथ हर प्रोग्राम में हाज़िर हुआ करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गाय बगाए हम इनफरादी तौर पर भी अपने आप को पेश करें ताकि आप लोग बताएं कि हम आपके साथ किस तरह की बातें करते हैं, अगर वो नागवार गुजरती हैं उस उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, और अगर अच्छी गुजरती हैं लगती हैं आपको तो उनको आप पल्ले बांधा करें ताकि हम सब का भी भला हो सके, फ़ायदा हो सके और अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो सके। थैंक यू सो मच। बाद इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। इंजॉय करें समर को भी और हमारी पाकिस्तानी सौगात आमों को भी, और जितने प्रोग्राम उनमें शामिल भी हों तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ साथ रहेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।